ये दो खसलतें हैं, अल-हिल्म वल-अना। हमें चाहिए कि हम सब मिलके एक दूसरे को नसीहत करते हैं, इन अच्छी खसलतों पर अमल करें, अपने मुआशरे को इन बुराइयों से बचाएं, अपने हक की तलाश जरूरी देखें। अपना हक लेना जरूरी है, मैं यानी कि अपना हक छोड़ दे, हरगिज नहीं, लेकिन हक लेने का तरीका है, शरई जरिया है, उस जरिए पे अमल करते करना जो है ये फजीलत है, अच्छी बात है। और माफ करना एहसान है, ये उससे भी अच्छी बात है, लेकिन बुजदली हरगिज जायज नहीं, ये और चीज है। और जल्दबाजी दुरुस्त नहीं है, लेकिन जल्दबाजी इबादात में दुरुस्त नहीं है, लेकिन इबादात के लिए अच्छी है। वो कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तबिकुल खैरात, एक दूसरे पर सबकत करो अच्छे कामों में। कैसे सबकत करो? नमाज के लिए आते हैं, पहली सफ का सवाब दूसरे से ज्यादा है, दूसरे का तीसरे से ज्यादा है, तो कोशिश करें कि अगली सफ में हो। ये जल्दबाजी, ये सबकत, ये अच्छी है।